गुड मॉर्निंग सुपर सुप्रभात छत्रपति संभाजी नगर। आज है बुधवार की सुबह और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, आपकी मॉर्निंग गुड करने के लिए आपके साथ इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करने आया हूं। दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी के एक सुविचार के साथ आज के अपने दिन को। गांधी जी कहते हैं कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। वाह, कितना गहरा और सच्चा संदेश है ना। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि यार समाज ऐसा है, लोग वैसे हैं, हालात बेहतर क्यों नहीं होते, लेकिन गांधी जी कहते हैं अगर बदलाव चाहिए तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आज आसपास पॉजिटिविटी हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच पॉजिटिव करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग ईमानदारी से काम करें तो शुरुआत खुद अपने ईमानदार होने से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस बुधवार की सुबह आइए ठान लेते हैं कि जो भी छोटा सा बदलाव हम कर सकते हैं वो करेंगे, चाहे किसी को मुस्कान देना हो, मदद करनी हो या फिर सिर्फ अपने काम को बेहतर करना हो। यकीन मानिए यही छोटे कदम बड़ा बदलाव बनाते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत विचार के साथ आज की सुबह को और खूबसूरत बनाते हैं और अपने वाली बनाते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट, आप सुनते हैं शानदार गाने, आपके दिन की शुरुआत को मनाएंगे एनर्जेटिक और पॉजिटिव विद आरजे अदनान इन द शो।

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। ये कहानी है रवि की। एक छोटे से गांव का लड़का जिसकी जेब में पैसे कम थे लेकिन सपने बहुत बड़े। स्कूल तक जाने के लिए रवि को हर दिन 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, कभी धूप कभी बारिश, लेकिन रवि रुका नहीं। उसका सपना था इंजीनियर बनने का। लोग हंसते थे, कहते थे तेरे जैसे लड़के खेतों में अच्छे लगते है, कहाँ पढ़ाई लिखाई करता है। लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी। सुबह खेत में काम करता, शाम को पढ़ाई करता और रात में अपना सपना देखता, अपने माँ बाप के लिए एक पक्के घर का। और फिर आया वो दिन जब गांव के एक मास्टर जी ने उसकी मेहनत को पहचाना और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा ली। रवि ने ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम में टॉप किया बल्कि स्कॉलरशिप लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज भी पहुंच गया। आज वही रवि एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है और अपने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया है ताकि किसी और रवि को उसकी तरह जूझना ना पड़े। दोस्तों, जिंदगी आपको जितनी भी मुश्किल लगे, याद रखिए अगर हौसला बड़ा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, लेकर आता हूं हर दिन एक छोटी सी कहानी। आपको ये कहानियों का सफर कैसा लगता है जरूर बताना। 9359320080 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना और सुनते रहना एमजीएम 90.8 एफएम। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आरजी अदनान आपके साथ है और गिफ्ट जीतने का मौका भी लेकर आया है।
1: All is well, आरजी अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो,
0: ऑन MGM 90.8 FM। सो गिफ्ट आप कैसे जीतोगे, बस मेरे एक छोटे से पहेली का जवाब देकर। देखो यार, पहेली मैं बहुत मुश्किल तो नहीं पूछता हूँ, बहुत आसान सी होती है, लेकिन थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सो आज की पहेली कुछ ऐसी है कि वो कौन है जो नीम और करेले से भी कड़वा होता है। बताइए वो कौन है जो कि नीम और करेले से भी कड़वा होता है। जवाब व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और ये एक ऐसी बात है जो कि सच में बहुत कड़वी होती है लेकिन असरदार होती है। बताइए नंबर फिर से एक बार दोहराता हूँ 9359320080। जो सबसे पहले जवाब देगा उसे गिफ्ट मिलेगा। सो जल्दी करे, देर मत करे और सुनते रहे।
1: All

0: जब तक हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तब तक चेहरे पर मुस्कान ओरिजिनल नहीं दिखेंगी। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। सो इसी पर बात करने के लिए अपने साथ है अभी डॉक्टर मानसी करसगांवकर, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी एंड लाइसन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो मैम मेरा सवाल आज आपसे ये है, सो मैम जिस इंसान को डिप्रेशन है तो वो इसमें से बाहर कैसे निकल सकता है?
1: देखिए सेल्फ अवेयरनेस तो जरूरी है, लेकिन अगर कोई डिप्रेशन से ग्रस्त हो रहा है दैट मींस कि सेल्फ अवेयरनेस का प्रमाण थोड़ा कम है। इन दैट केस सबसे पहले आता है फैमिली और फ्रेंड्स, जो लोग नियर एंड डियर वंस हैं।

0: फरमाइश फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइश सराखों पर। आरजे अदनान आपके साथ इन द शो।
1: ऑल इज वेल, आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और आपकी फरमाइश पूरी करना तो मेरा हक है, मेरा कर्तृत्व है। सो आज के गाने की फरमाइश आई है परवीन पटेल जी की तरफ से इस गाने के लिए।
2: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे कसम लौट आइए।
0: क्या बात यार, कितना बेहतरीन गाना है। बेकरार करके यूं न जाइए, ना ना मैं तो नहीं गाऊंगा ये गाना, आपको सुनाऊंगा, मेरी आवाज उतनी खास नहीं है, लेकिन परवीन जी की फरमाइश पर ये गाना हम प्ले करेंगे, जो कि हेमंत कुमार जी ने गाया है और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे खुद हेमंत कुमार जी और लिरिक्स थे शकील बदोयानी जी के। सो चलिए फिर आप परवीन जी की फरमाइश पर ये गाना प्ले करते हैं। बाय द वे दोस्तों, अगर आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो हमें बिंदास व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। देखो यार, आप जो फरमाइश करनी है कीजिएगा, वो मैं प्ले करूंगा। फिलहाल बेकरार करके यूं न जाइए, ये गाना एंजॉय करते हैं और सुनते हैं। स्टे ट्यून।
2: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी पसंद लौट आए।

एक बात तो यार, अगर किसी चीज का आप बेसब्री से इंतजार करो ना और वो चीज मिल जाए तो उसकी खुशी कुछ अलग होती है, होता है ना ऐसा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और अपने छत्रपति संभाजीनगर वासियों को एक चीज का बेसब्री से इंतजार था, जब से जून मंथ शुरू हुआ ना तब से इसका इंतजार था और ये कुछ चीज हमें मिल ही नहीं रही थी, लेकिन कल जो शाम से बरसना शुरू हुई है बरसात, तो यार मानना पड़ेगा। मतलब वो कहते ना कि किसी चीज को आप बड़ी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है, साजिश करती है। अब मेरा डायलॉग भले यहाँ पर गलत हो गया हो लेकिन फीलिंग समझिएगा यार, इतने दिनों से हम अपनी बरसात का इंतजार कर रहे थे और कल से बढ़िया सी अच्छी खासी बरसात अभी अपने शहर में शुरू हो चुकी है। कल रात में भी बहुत जोर से बरसात गिरी थी और आज की मॉर्निंग की शुरुआत ही बरसात से हुई थी और दिन भर में भी क्या हाल है हम सभी की नजरों के सामने है और बरसात थोड़ी 19-20 हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि अच्छी खासी ठीक ठाक बहुत बेहतरीन बरसात हो सकती है अपने शहर में भी, अपने मराठवाड़े में भी और अपने महाराष्ट्र में भी। तो कहते ना कि क्या कहते उसको, मैं भूल गया यार, ये ऐसा होता है। खैर खुशी इतनी है कि कभी कभार इंसान भूल जाता है। हाँ, सबर का फल मीठा होता है, यही मैं कह रहा था और वही फल अब हमें मिल रहा है। तो एक बात तो है बरसात आती है, लेकिन एक और बात है ये बत्ती क्यों गुल हो जाती है। मतलब बरसात जैसी आना शुरू हुई तो एक मिनट के अंदर शहर की कल पूरी बत्ती गुल हो गई थी और ये पहली बार नहीं हुआ है, हर साल का ही ये रीजन है। और महावितरण क्या कहता है, मी मध्ये त्यांनी सांगितलं होतं आम्ही मान्सून पूर्व काम करण्यास सध्या बिझी आहोत, इतने गर्मी के अंदर वो बत्ती गुल कर रहे थे, क्यों तो मानसून के पहले की उनको काम करना थे। अब मानसून शुरू हो गया लेकिन काम आपने किया वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, बत्ती गुल तो आज भी हो रही है और आने वाले वक्त में भी ये हो सकती। मतलब एक अलग कॉम्बिनेशन है बरसात का और इस बत्ती गुल का, जाऊन ध्यान, लेकिन बरसात का मजा उठाइएगा और बाकी आरजे अदनान के साथ शो का भी मजा उठाइएगा। कुछ देर के बाद लौट कराऊंगा, तब तक के लिए एंजॉय करना आने वाले सुपर से डुपर हिट गाने और इस मौसम का मजा लेना और सुनते रहना।

डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ दम तो लेने दो। हा हा हा, हमसे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, यानी यानी यानी प्यार हो

पॉकेट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

आपको क्या लगता है अपना प्रशासन प्यार का दुश्मन है? बिल्कुल भी नहीं, किसी किसी लोगों का ऐसा लगता होगा। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान। और मैं इसलिए ऐसा कहा कि प्रशासन क्या प्यार का दुश्मन है ऐसा आपको लगता है? क्या है ना, कुछ दिनों से यानी कि कल से अपने शहर में प्रशासन ने एक मुहिम शुरू की है महानगर पालिका ने, कि जो अनधिकृत कैफे है, जो इलीगल कैफे, जहाँ पर प्यार के नाम पर कुछ और ही चीजें चलती थी, तो उनको तोड़फोड़ करने का, उनको बंद करने का काम प्रशासन ने शुरू किया है। आपले छत्रपति संभाजीनगर मध्ये असे काही कॅफे आहेत जिथे कॅफे कमी आणि लोअर पॉइंट जास्त झालेले आहेत। वहां पर छोटे छोटे कॅबिन बनाए है कपल्स को बैठने के लिए, और वहां पर क्या कुछ होता है आप अलग से बोलने की बात नहीं है। और ऐसे जो कॅफे है ना, तो इसके ऊपर महानगर पालिका हथौड़ा चला रही है एंड उस कॅफे को बंद कर रही है, और वहां पर जो अश्लील चीजें चलती थी उस पर भी पूरा बंदी आ गई है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि यार अपना प्रशासन प्यार का दुश्मन है। नहीं भाई, प्रशासन पूरी दुनिया प्यार से तो चलती है, लेकिन प्यार के नाम पे जो गलत चीजें अपने शहर में हो रही थी, पब्लिक प्लेस को लोअर पॉइंट बना दिया था कुछ कपल्स ने, और कैफे की एक पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी थी। ऐसा लगता है कि यार कैफे में जाने का मतलब है कुछ गलत चीज करना, और ऐसे हो भी रहा था क्योंकि शहर में कुछ कुछ कैफे ऐसे है जो कैफे कम और ऐसी वैसी चीजें बहुत ज्यादा लग रही थी, तो ऐसे कैफे पर एकदम हथौड़ा चल रहा है। एंड दोस्तों, अगर आप भी ऐसे कैफे में जाते होगे तो थोड़ा बच के रहिएगा। देखो, प्यार कीजिए, प्यार को कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन प्यार के नाम पे जो आप अश्लील चीजें करते हो ना, वो अवॉइड कीजिएगा पब्लिक प्लेस में भाई, समझेगा? वरना कल को प्रशासन की नजरों में आप भी आ जाओगे, फिर प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। इलीगल कैफे मध्ये जाऊ नका, आणि जे असे कॅफे आहेत ना, ते आता लवकरात लवकरच बंद होणार आहेत, कारण की ही मोहीम सध्या महानगरपालिका सुरूच ठेवणार आहे। सो बी सेफ अँड स्टे ट्यून्ड।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिस पर आज भी बात करने के लिए लोग थोड़ा कतराते हैं और हर कोई ना तो इससे गुजरता है। स्पेशली आज का यूथ बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करता है एंड 20 to 30 ये जो एज है ना, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस अपने जिंदगी में आते हैं। किसी का हार्ट ब्रेक होता है, कोई करियर का टेंशन लेता है और अलग अलग चीजों की वजह से ना तो मेंटल हेल्थ का वो शिकार होते हैं। तो आज यूथ और उनकी मेंटल हेल्थ क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर, मानस उपचार एंड व्यसन मुक्ति तज्ञ। हेलो सर, आपका स्वागत है।
1: हेलो,
0: कैसे हो सर आप?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: एकदम बढ़िया सर। तो सर, यूथ के सिलसिले में आज हम बात करेंगे।
1: यस,
0: तो मेंटल हेल्थ आज के वक्त में ना छोटे छोटे चीजों से बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब होती है, मतलब यूथ की। चाहे फिर सबसे मेन रीजन है आज के वक्त में हार्ट ब्रेक हो, फिर एग्जाम प्रेशर हो। तो 20 से 30 के यंग एज में कौन कौन से चैलेंजेस को आज की जनरेशन फेस करती है जिससे उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है?
1: अभी क्या है, देखो अपन अभी उसको 20 से 30 साल के बजाय अपन ऐसा कंसीडर करेंगे 15-16 साल से वही पहले। अच्छा। का जो प्रॉब्लम 20-30 में स्टार्ट होते थे वो अभी 15 से 16 साल के बीच में स्टार्ट होते हैं। उसका बेसिक रीजन है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, यानी ट्रांजिशनल फेज, यानी वो उसी वक्त है ना जो बच्चे होते हैं वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप से अडल्ट ग्रुप में जाते हैं। तो उन लोगों में फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसमें अपन हार्मोनल इम्बेलेंसेस होते हैं उनमें। तो इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके बिहेवियर में, थिंकिंग पैटर्न में, या फिर उनका डेली स्लीप पैटर्न हो या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, इन सब पे असर करता है। एंड यही सबसे नाजुक दौर है कि जिनमें सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बेलेंस होता है वही एक फेज है जिस फेज में कि आपका करियर भी उसी वक्त डिसाइड होता है, आपका जो एग्जाम का प्रेशर होता है, यानी जितने भी करियर रिलेटेड जितनी एग्जाम्स होती है, नीट हो, JEE हो या और भी कई सारे एंट्रेंस है, या इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह है, वो उसी फेज में आती है। तो वो क्या होता है, उस वक्त करियर बनाने का एक प्रेशर रहता है और आगे की इनसिक्योरिटी रहती है कि मैं वो डिसीजन वो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आगे चल के क्या होगा, ये सब चीज उसमें इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है। अच्छा, यही फेज है कि इसी फेज में लोग एक्सप्लोर करते हैं, अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करते हैं लोग बच्चे, और उसमें इसी फेज में अपना सेक्सुअलिटी अपना एक्सप्लोर करते, उस वजह से दिस इज द टाइम जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और उनमें चीजें रहती है, बेचैनी वगैरह बहुत ज्यादा। सो ये वाला पहला हुआ करियर रिलेटेड चीज है। दूसरा मैं बता रहा हूँ, वही एक फेज होता है जिसमें रिलेशनशिप ब्रेकअप, जैसे अभी आपने कहा कि, और रिलेशनशिप में डिमांड बहुत होती है, प्रायोरिटीज वो सेट हो जाती है, ये सब चीजें उसमें और एडिशनल स्ट्रेस करती है। तीसरा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेने स्टार्ट करते इसी एज में, कि पहले खेल कूद वाला, फ्रेंड्स वाला वो ग्रुप होता है, ये फेज होता है जिसमें करियर, जॉब और वो सब चीजें स्टार्ट होती है, मैरिज रिलेटेड सभी चीजें इसी एज में आती है, वो एक उनमें अनसर्टेनिटी होती है उससे रिलेटेड भी, कि अपना लाइफ पार्टनर कैसे होगा, क्या होगा, यार दे आर इन लाइक सर्च ऑफ या अपने अच्छे लाइफ पार्टनर में, वो आजकल जितने अनसर्टेनिटी उनमें बहुत चीजें हो जाती। सो एक और ये एक चीज है। तीसरा इसका अभी क्या है कि एक सोशल मीडिया का ओवर यूज या उसका बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड होना। अभी क्या है, सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट करते हैं, दे पोस्ट लाइक ब्यूटी, दे पोस्ट लाइक रिचनेस, दे पोस्ट लाइक की शॉपिंग या उन्होंने क्या चीजें की है, फिर उस चीज के लिए वो पाने के लिए वो कंपैरिजन उन बच्चों में बहुत बढ़ जाता है या इस एज में। एंड सोशल मीडिया का ओवर यूज होने की वजह से भी दिमाग में या ब्रेन में कुछ चेंजेस आती है, वो अलग से एडिशनल डिप्रेशन एंड एंजाइटी चीजें बढ़ाती है। यही एक चीज है जिसमें अभी क्या है कि एडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि क्या होता है

0: ये एक फेज है जो बच्चे थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं तो इंडिपेंडेंट थोड़े हो जाते हैं, इन दौरान वो जो उनके ऊपर फैमिली थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि उनका या एक कंट्रोल रहता है, वो थोड़ा छूट जाने की वजह से इसमें एडिक्शन चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने का चांस रहता है। यही एक फेज है कि जिसमें बच्चे एडिक्शन की तरफ या यंग एडल्ट स्पेशली जो अल्कोहल या फिर है ना टोबैको स्मोकिंग या इससे भी और तरीके के थोड़ा और जैसे कैनाबिस वीड्स हुए या और भी ड्रग्स वगैरह करते हैं लोग, ये सब चीजें इसी चीज में ये एज ग्रुप रहता है जिसमें सबसे ज्यादा वो स्टार्ट होने का चांस रहता है, जो एडिशनल बर्डन हमें बढ़ाता है। सो फाइनेंशियली सोशली क्राइम रेट भी इसी फेज में बढ़ता है, कंपेरिजन बढ़ता है, सोशल मीडिया यूज, करियर अनसर्टेनिटी और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें मर्ज की जाए तो दिस इज द रीजन कि इस फेज में सबसे ज्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं।
1: सो हम सर के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन कुछ ही देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और हमारे साथ है डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार एंड व्यसन मुक्ति तज्ञ। सर के साथ आज हम बात कर रहे हैं यूथ के मेंटल हेल्थ के बारे में।
1: और सर, हमारी सोसाइटी में लड़कों से हमेशा स्ट्रांग रहने की बात की जाती है, तो स्ट्रांगनेस की वजह से इतने मेंटल हेल्थ पर कुछ असर होता है क्या कि हमेशा स्ट्रांग ही रहो?
2: एक चीज ये बताऊं मैं, लड़कों से एक्सपेक्टेशन हमें ज्यादा है, बट इन रियलिटी फीमेल के हार्मोन इस तरह से है, वो मेल से या लड़कों से लड़कियां ज्यादा अच्छे से स्ट्रेस हैंडल कर पाती हैं, उनमें वो पॉजिटिव हार्मोन्स है। लड़कियां या फीमेल इमोशनल होती है, लड़के इमोशनल होते नहीं है, पर लड़कियां इमोशनल होके या गर्ल्स होती है वो वेंट आउट कर देती है अपने इमोशन होके, लड़के उनमें ईगो आता है इन चीज के लिए, दे कांट एक्सप्रेस। इस चीज से क्या होता है कि उनमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनसे एक्सपेक्टेशन इस तरह से रहते हैं। हमारी सोसाइटी भी अभी क्या है कि इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कि वही घर चलाएगा, वही आगे चल के करियर उसने पहले बनाना चाहिए। उनके ऊपर हमेशा एक तरह का प्रेशर रहता है कि उन्हें कुछ कर दिखाना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पेरेंट्स को भी उसी से संभालना है, घर भी उसी को चलाना है, सेटल भी उसी को पहले होना है। तो ये चीज डेफिनेटली थोड़ा इन अवर सोसाइटी, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उन चीजों में डेफिनेटली लड़कों के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है। एंड जो मेल नेचर है कि उनमें थोड़ा सा एनर्जी स्ट्रेंथ ये चीजें ज्यादा होती है, तो उनका जो वेंट आउट होता है वो ज्यादा गुस्सा करके ये करके उनका वो ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं रादर देन गेटिंग इमोशनल।
0: सो कुछ इस तरीके से ये सब चीजें होती है जो सर ने अभी हमें एक्सप्लेन की, तो ये बातें याद रखिये। और भी बहुत सारी बातें होगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इन द शो ऑल इज वेल।

0: वेलकम बॅक, यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM. आरजे अदनान तुमच्यासोबत आहे. आपल्यासोबत आहेत मानसोपचार आणि व्यसनमुक्ती तज्ञ डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर. और सर के साथ आज हम यूथ के मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं.
1: और सर, कैसे पता चले कि नॉर्मल स्ट्रेस और सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यू में क्या फर्क हो सकता है?
2: देखो, अभी क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस देखो, मैं जैसे बताऊँ की स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. वो ऐसा वो स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता है और हर किसी के लाइफ में है. किसी को फैमिली रिलेटेड है, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को एकेडमिक है, किसी को करियर रिलेटेड या वर्क प्लेस पे ज्यादा स्ट्रेस. बट स्ट्रेस इज योर पार्ट ऑफ लाइफ. वो रहने वाला है, वो लाइफ का पार्ट है, वो हमेशा रहने वाला है. बस उसका जो कंटेंट है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा. जैसे वो कभी आज मुझे करियर रिलेटेड है, मुझे कल पढ़ाई का होगा, परसों फाइनेंशियल रिलेटेड होगा, तीसरा मुझे मेरे रिलेशनशिप के लेकर होगा. ये चीजें चलते रहेगी. सो क्या है कि ये स्ट्रेस होना थोड़ा जरूरी भी है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस रहा तो वो एक्टिंग फोर्स काम करता है हमारे लिए. अगर स्ट्रेस नहीं रहा है, दूसरे दिन एग्जाम है, अगर मैं आज स्ट्रेस नहीं लू तो मैं पढ़ूंगा नहीं ना, तो इट इज एन एक्टिवेटिंग फोर्स. वो थोड़ा जरूरी होता है. बट स्ट्रेस जब हावी होता है मीन्स आप परसिस्टेंटली वो थॉट आपके दिमाग से नहीं जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे आप उसी थॉट में रहते हो, और जिसके वजह से आपको बेचैनी होना, हमेशा डिप्रेस या सैड फील होना, नींद नहीं आना, ये जब चीजें होती है, गुस्सा बढ़ जाना या फिर बिल्कुल शांत हो जाना, ये सब चीजें होने लगती है, तब थोड़ा समझना है कि नाउ स्ट्रेस इज ओवरवेलमिंग. नाउ आपका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी कम हो या फिर स्ट्रेस का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है. सो दिस इज द डिस्टिंगुइशिंग फैक्टर कि लाइफ में स्ट्रेस थोड़ा जरूरी है, बट वो हावी होता है और ये सब चीजें आती है, तो समझना कि यस नाउ दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. हाँ जी,
1: तो कभी कभार स्ट्रेस होना भी जरूरी है.
2: एक लिमिट में.
0: यस. सो ये सब बातें याद रखिएगा किस तरीके से होती है. और भी अपनी बहुत सारी बातें होगी, लेकिन कुछ ही देर में. तब तक स्टे ट्यून्ड.

0: जाएगा।
1: आज के यूथ में बहुत से मेंटल हेल्थ वाले प्रॉब्लम नजर आते हैं, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है एंड हमारे साथ साइकेट्रिक डॉक्टर अमोल पाथरीकर सर। स्ट्रेस आता है या वो मेंटल हेल्थ से जूझता है तो उसे लगता है कि मैं एक सुट्टा मार लूंगा या एक ड्रिंक कर लूंगा सब ठीक हो जाएगा, तो ये कितना हार्मफुल है और अगर इससे बाहर निकलना है।
2: पहले तो देखो ये रिलेशन जो है ना कि स्ट्रेस और एडिक्शन, पहले तो ये कभी एक साथ जोड़ना नहीं है। अल्कोहल जैसी एक चीज है जैसे वो आपके दिमाग में जो स्ट्रेस से जो चीजें ब्रेन में आती है उससे कई गुना ज्यादा अल्कोहल या एडिक्शन वो ब्रेन में वो निगेटिव चेंजेस लाता है। इतने हार्मोनल डिफिकल्टीज आती है उन चीजों में एडिक्शन की वजह से, जिसके वजह से आपका डिप्रेशन 10 गुना ज्यादा बढ़ता है। आपका क्या करता है, उतने थोड़ी देर के लिए हमें बस स्ट्रेस भुलाने के लिए वो 2-3 घंटा 4 घंटा आपका स्ट्रेस अल्कोहल कम करेगा, बट आपको दूसरे दिन जब उसका इफेक्ट निकल जाएगा एडिक्शन का तो आपका स्ट्रेस 10 गुना ज्यादा बढ़ेगा। आप पहले से ज्यादा आप और स्ट्रेस और आप पहले से ज्यादा डिप्रेस फील करोगे। कि पहले लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेस ना आए इसलिए अल्कोहल पे, पर बाद में है ना ये इक्वेशन थोड़ा रिवर्स हो जाता है। फिर बाद में आप उसके ऊपर इतना डिपेंड हो जाते हो कि आप अल्कोहल का क्वांटिटी बढ़ाने के बाद भी आपको स्ट्रेस उतना हैंडल होता नहीं, आप वो सैडनेस आता ही है। यानी पहले मुझे मैं थोड़ा ड्रिंक करता था तो मुझे ठीक लगता था, मुझे मेरा क्वांटिटी मैंने बढ़ा दिया तो भी मुझे पहले जैसा ठीक नहीं लग रहा है। अल्कोहल आपके दिमाग में चेंजेस लाएगा, साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकली भी लाएगा। और तीसरा कि ये है कि अल्कोहलिक्स में सुसाइड रेट भी बहुत ज्यादा होता है प्रैक्टिकली इससे। तो क्या है कि अल्कोहल आपका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाता यानी कैपेसिटी कभी नहीं बढ़ाता है, रादर आपको स्ट्रेस के लिए और डिफिकल्ट कर देता है, आपको जिंदगी जीना डिफिकल्ट हो जाती है उससे, आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते।
1: सो मतलब ये एक बहाने है स्ट्रेस कम करने की, तो वो बात गलत है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धोए में उड़ाता चला गया। ये चीजें बस गाने में अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स लॉट। आज हमने यूथ के मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, आई होप कि इससे हमारे यूथ को जरूर कुछ फायदा होगा। स्टे ट्यून्ड।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी, MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6, कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
4: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी

0: इस गाने में कहानी है इंतजार की। यहाँ एक प्रेमिका अपने दूर देश गए हुए प्रेमी का इंतजार कर रही है। चौधरी लव रिप्रेजेंट करता है उस प्रेमी के लिए और वो कहती है तुम छुपो मत, मुझे अपना दर्शन करवाओ।
1: छुपना जाओ जी, मना दीत कराओ जी।
0: और यहाँ पर वो एक प्यारी सी धमकी देती है, चौधरी मैं तुम्हारी सारी शरारतें जानती हूँ, मुझसे पंगा ना ले।
1: हरी शरारत सब जानू मैं तो धरी।
0: और इसी गाने में दो लव्स बहुत मायने रखते हैं, ह्यूडा यानी कि दिल, धोकनी जो कि लोहार यूज करता है। जैसे धोकनी से आग बढ़ती है वैसे उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है।
1: मर!

गुड मॉर्निंग आरजी अदनान आपके साथ इन द शो ऑल इज वेल आरजी अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और आज मैंने आपको ना तो एक पहेली पूछा था, बहुत सिंपल सी पहेली थी कि वो क्या है जो बिना आवाज के बोलती है। सो इसका जवाब मुझे बहुतों ने व्हाट्सएप करके बताया, बट बहुत से लोगों ने इस बार गलत जवाब बताया था अलग अलग, क्योंकि इसका एकदम सही जवाब था किताब। जी हाँ, किताब जो कि बिना आवाज के बोलती है। कितना सिंपल बात है ना, जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम किताब के साथ गुफ्तगु करते हैं, बातें करते हैं, यानी कि बिना आवाज के किताब बोलती है। सो ये एकदम इसका सही जवाब है और परफेक्ट इसका आंसर दिया है समीर देशमुख ने। सो कॉन्ग्रेचुलेशन समीर जी, आज आप विनर बन चुके हो, आपको हमारी से एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। सो समीर जी ने एकदम परफेक्ट सही जवाब दिया है। सो आपको भी ऐसे गिफ्ट जीतना है तो मेरे पहेलियों के जवाब देते रहिए और बाकी तो सुनते रहिए। All is well, RJ and Nanak, a morning show, freshness light radio ka flow on MGM 90.

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FM 90.8।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

फिल्म सुनी, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। ये अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात, MGM 94 एफएम, साथ है तो बात है।

आगे का रास्ता खराब था, ये लगा था बड़ा बोर्ड। मैंने बस ये सोचा होगा छोटा मोटा मोड़। हुआ जब ये हादसा और आया मुझे होश, तब जाके जाना बस यहीं तक।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: सवाल पूछ लूं डायरेक्टली
1: जी,
0: फैमिली प्रेशर में आके शादी तो नहीं कर रही हूँ, एज इन कोई अफेयर हो, और क्योंकि तुम्हारी फैमिली चाहती है इसलिए तुम उसे शादी कर रही हो।
2: एहसास की जो जुबान बन गए।
1: किसने कहा हमें आपसे शादी करनी है?

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

0: मशहूर तुझपे जिंदगी लुटा दूंगा।
1: हर दिल की आवाज बने।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
1: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे,
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
3: MGM 90.8 FM,
4: साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शाम का समय दिन का सबसे खूबसूरत समय होता है। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद जब सूरज धीरे धीरे ढलता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति में हमें थोड़ा रुकने और मुस्कुराने का मैसेज दिया है। कई लोग इस समय अपने परिवार के साथ बैठकर चाय का आनंद लेते हैं, कुछ लोग टहलने निकलते हैं गार्डन या किसी पार्क में, तो कुछ अपने पसंदीदा गाने सुनकर दिन भर की थकान दूर करते हैं। शाम हमें ये याद दिलाती है कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने लिए कुछ पल निकालना बहुत जरूरी होता है। ये पल सिर्फ हमें जीना नहीं सिखाते तो खुशियों के सही मायने सिखाते हैं। आज के इस खूबसूरत शाम में आप भी कुछ समय अपने लिए जरूर निकालिए, अपने प्रियजनों से बात कीजिए, खुलकर हंसिए और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लीजिए। इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने शो में। एंड ऑफ कोर्स सभी को दिल से गुड इवनिंग, जहां आपका मनोरंजन और अच्छी बातें लगातार जारी रहेगी। ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर छुपी होती है, वो है खुद पर विश्वास। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं कर सकती हूँ, तभी सफलता की ओर हमारा पहला कदम आगे बढ़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी काम को शुरू करने से पहले ही हम सोचने लगते हैं कि ये बहुत मुश्किल या हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन सच तो ये है कि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हर सफल इंसान ने अपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया है, फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हार मानने की बजाय खुद पर भरोसा रखा। हो सकता है कि पहली बार में सफलता ना मिले, लेकिन हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है और आगे बढ़ने का हौसला देती है। आज खुद से एक वादा कीजिए, आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखेंगे। याद रखिए, अगर आपके इरादे मजबूत है और मेहनत सच्ची है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। इसे विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सुनते रहिए दिल से ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और एम्बियंस दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन। यहाँ मिलेंगे डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीनास स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफटॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स। मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजीनगर। क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
1: तो MCM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mcmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515।

सुन रहे हैं एमजीएम नाड़ी पॉइंट एफएम और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। एक कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है, यानी लोग सुबह जल्दी

उठते हैं वो दिन की शुरुआत नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ करते हैं। सुबह का समय बहुत खास होता है, चारों तरफ शांति होती है, ताजी हवा होती है और मन भी बिल्कुल शांत रहता है। अगर हम सुबह जल्दी उठ जाए तो हमें अपने लिए थोड़ा समय मिल जाता है। हम टहल सकते हैं, योगा कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं या बस कुछ प्रकृति के साथ अपना समय बिता सकते हैं। जल्दी उठने में हमारा दिन अच्छी तरह से शुरू होता है, हम अपने काम समय पर कर पाते हैं और पूरे दिन खुद को ज़्यादा सक्रिय और खुश महसूस करते हैं। कई सफल लोग भी अपनी सफलता का एक रात सुबह जल्दी उठने का भी मानते हैं। अगर आप भी अपने दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कल से नहीं बल्कि आज रात ही तय कर लीजिए कि सुबह थोड़ा जल्दी उठेंगे और उगते सूरज की खूबसूरती का आनंद लेंगे। इसी पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ते हैं शो में आगे। एंड ऑफ कोर्स बनाए रखिए अपनी मुस्कान अपने चेहरे पर एंड सुनिए कुछ बेहतरीन गाने ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। प्यार एक ऐसा एहसास है जो बिना किसी शोर के धीरे धीरे दिल में अपनी जगह बना लेता है, और जब किसी को प्यार हो जाता है तो पूरी दुनिया ही खूबसूरत लगने लगती है। अब जो गाना हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उसका नाम है हो गया है तुझको तो प्यार सजना। ये गाना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का एक बेहद प्यारा और यादगार गाना है, जो प्यार की मासूमियत और दिल की भावनाओं को बहुत खूबसूरती से पेश करता है। कई बार हमें खुद भी पता नहीं चलता कि कब कोई हमारे दिल के इतना करीब आ जाता है। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसका साथ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और फिर एक एहसास होता है कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है बल्कि कुछ और ही है, कुछ ज़्यादा खास दिल के पास। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा खास इंसान है जिसकी याद आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है तो ये गाना आपके लिए है। प्यार के इस खूबसूरत एहसास को महसूस करते रहिए और ऑफ कोर्स सुनते रहिए ये सदाबहार गाना ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात
1: पाडू प्राण्यांच्या आरोग्याच्या खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ एनसी।

0: कॉन्टेक्ट नंबर 9860671 9130. MGM पेट केअर.
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा.
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in. एडमिशन ओपन. MGM यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन. फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस एन 6 को छत्रपति संभाजीनगर.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शाम की बात हो और चाय का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद एक कप गर्मा गर्म चाय ना सिर्फ थकान दूर नहीं करती बल्कि चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भी ले आती है। चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक एहसास है। कुछ लोग सुबह की शुरुआत चाय से करते हैं तो कुछ लोग शाम की चाय के साथ अपने परिवार दोस्तों के साथ खूबसूरत पल बिताते हैं। चाय के साथ होने वाली बातें, हंसी मजाक और यादें जिंदगी को और भी खास बना देती है। तो अगर आप भी चाय के शौकीन हैं तो अपने लिए एक प्याला गरम गरम चाय बनाइए, आराम से बैठिए और इस सुहानी शाम का मजा लीजिए। हम भी आपके साथ हैं बेहतरीन गानों और ढेर सारी प्यारी बातों के साथ। तो चाय की चुस्कियों के साथ अपनी इस शाम को और भी खास बनाइए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि करने वाले हैं हम कुछ और इससे रिलेटेड बात ओनली ऑन एमसी 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। हम में से बहुत से लोग रोजाना चाय का आनंद लेते हैं, खासकर बाहर जाते समय। कई बार हम कागज के कप यानी पेपर कप में चाय पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ शोधों में ये बात सामने आई है कि पेपर कप के अंदर प्लास्टिक की एक पतली परत होती है जो गर्म चाय के संपर्क में आने पर बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक कण यानी माइक्रो प्लास्टिक छोड़ सकती है। हालांकि इस विषय पर साइंटिस्ट अभी भी शोध कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं कि जहां संभव हो हमें स्टील कांच या मिट्टी की कुल्हड़ जैसे विकल्प को इस्तेमाल करना चाहिए। इससे न सिर्फ हमारी सेहत का ध्यान रखा जा सकता है बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो तो अपने कप के बारे में एक बार ज़रूर सोचिए। छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव ला सकती है। फिलहाल अपने पसंदीदा कप में चाय का मज़ा लीजिए और इसी खूबसूरत शाम का आनंद उठाइए हमारे साथ। कहीं मत जाइए क्योंकि मनोरंजन का सिलसिला भी जारी है ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज हम एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, प्लास्टिक कप को कहें ना। हम अक्सर चाय कॉफ़ी या ठंडे ड्रिंक को पीने के लिए प्लास्टिक के कप का इस्तेमाल करते हैं। ये आसान और सस्ता तो लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असर हमारी सेहत और पर्यावरण पर कितना बुरा पड़ सकता है। प्लास्टिक के कप आसानी से नष्ट नहीं होते, उन्हें खत्म होने में कई साल लग जाते हैं। यही प्लास्टिक नदियों, खेतों और समुद्र तक पहुंचकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इतना ही नहीं, हॉट ड्रिंक पीने के दौरान प्लास्टिक के कुछ हानिकारक तत्व हमारे शरीर में भी जा सकते हैं। क्यों ना आज से एक छोटी सी शुरुआत की जाए, जब भी संभव हो प्लास्टिक कप की जगह स्टील का, चीनी मिट्टी के कप या मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल करें। ये न सिर्फ हमारी सेहत के लिए बेहतर है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में मदद करता है। याद रखिए, एक छोटा सा कदम बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। तो आइए मिलकर संकल्प ले, प्लास्टिक कप को ना कहेंगे और पर्यावरण को हाँ कहेंगे। इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ अमेजिंग गाने ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं एमजीएम 90.8 एफएम और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी मनीषा आपके साथ। देखते ही देखते आज की ये खूबसूरत शाम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। उम्मीद है कि इवनिंग व्यू के साथ बिताया गया ये समय आपको पसंद आया होगा। हर शाम अपने साथ कुछ यादें, कुछ बातें और कुछ मुस्कुराहटें छोड़ जाती है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आज के इस सफर में हमने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई होगी और आपकी शाम को थोड़ा और खुशनुमा बनाया होगा। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन ये विदा ही सिर्फ आज के लिए है। हम फिर मिलेंगे एक नई सुबह और नई ऊर्जा और नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन के हर पल का आनंद लीजिए। फिलहाल मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। वेरी गुड नाइट टू यू एंड अपनी अपनी इस प्यारी शाम का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इसी प्यार और इसी अपनेपन के साथ ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग and technology programs, BTech 4 years after HSC, computer science and engineering, IoT, cyber security including blockchain technology, computer science and engineering, cyber security, electronics engineering, VLSI design and technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar.

0: फरमाइश फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइश सराखों पर, आरजे अदनान आपके साथ इन द शो।
1: ऑल इज वेल, आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और आपकी फरमाइश पूरी करना तो मेरा हक है, मेरा कर्तृत्व है। सो आज के गाने की फरमाइश आई है परवीन पटेल जी की तरफ से इस गाने के लिए।
2: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे पसंद लौट आइए।
0: क्या बात यार, कितना बेहतरीन गाना है, बेकरार करके यूं न जाइए। ना ना, मैं तो नहीं गाऊंगा ये गाना, आपको सुनाऊंगा, मेरी आवाज उतनी खास नहीं है, लेकिन परवीन जी की फरमाइश पर ये गाना हम प्ले करेंगे, जो कि हेमंत कुमार जी ने गाया है और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे खुद हेमंत कुमार जी और लिरिक्स थे शकील बदोयानी जी के। सो चलिए फिर आप परवीन जी की फरमाइश पर ये गाना प्ले करते हैं। बाय द वे दोस्तों, अगर आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो हमें बिंदास व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। देखो यार, आप जो फरमाइश करनी है कीजिएगा, वो मैं प्ले करूंगा। फिलहाल बेकरार करके यूं न जाइए, ये गाना एंजॉय करते हैं और सुनते हैं। स्टे ट्यून।
2: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे पसंद लौट आए।

एक बात तो यार, अगर किसी चीज का आप बेसब्री से इंतजार करो ना और वो चीज मिल जाए तो उसकी खुशी कुछ अलग होती है, होता है ना ऐसा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और अपने छत्रपति संभाजीनगर वासियों को एक चीज का बेसब्री से इंतजार था, जब से जून मंथ शुरू हुआ ना तब से इसका इंतजार था, और ये कुछ चीज हमें मिल ही नहीं रही थी। लेकिन कल जो शाम से बरसना शुरू हुई है बरसात, तो यार मानना पड़ेगा। मतलब वो कहते ना कि किसी चीज को आप बड़ी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है, साजिश करती है। अब मेरा डायलॉग भले यहाँ पर गलत हो गया हो, लेकिन फीलिंग समझिएगा यार, इतने दिनों से हम अपनी बरसात का इंतजार कर रहे थे और कल से बढ़िया सी अच्छी खासी बरसात अभी अपने शहर में शुरू हो चुकी है। कल रात में भी बहुत जोर से बरसात गिरी थी और आज की मॉर्निंग की शुरुआत ही बरसात से हुई थी, और दिन भर में भी क्या हाल है हम सभी की नजरों के सामने है। और बरसात थोड़ी 19-20 हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि अच्छी खासी ठीक ठाक बहुत बेहतरीन बरसात हो सकती है अपने शहर में भी, अपने मराठवाड़े में भी और अपने महाराष्ट्र में भी। तो कहते ना कि क्या कहते उसको, मैं भूल गया यार, ये ऐसा होता है। पर खुशी इतनी है कि कभी कभार इंसान भूल जाता है। हाँ, सबर का फल मीठा होता है, यही मैं कह रहा था, और वही फल अब हमें मिल रहा है। तो एक बात तो है बरसात आती है, लेकिन एक और बात है ये बत्ती क्यों गुल हो जाती है। मतलब बरसात जैसी आना शुरू हुई तो एक मिनट के अंदर शहर की कल पूरी बत्ती गुल हो गई थी, और ये पहली बार नहीं हुआ है, हर साल का ही ये रीजन है। और महावितरण क्या कहता है, मी मजी त्यांनी सांगितलं होतं, आम्ही मान्सून पूर्व काम करण्यात सध्या बिझी आहोत, इतने गर्मी के अंदर वो बत्ती गुल कर रहे थे, क्यों तो मानसून के पहले के उनको काम करना थे। अब मानसून शुरू हो गया, लेकिन काम आपने किया वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, बत्ती गुल तो आज भी हो रही है और आने वाले वक्त में भी ये हो सकती। मतलब एक अलग कॉम्बिनेशन है बरसात का और इस बत्ती गुल का, जाऊन दिया। लेकिन बरसात का मजा उठाइएगा और बाकी आरजे अदनान के साथ शो का भी मजा उठाइएगा, कुछ देर के बाद लौट कराऊंगा, तब तक के लिए एंजॉय करना आने वाले सुपर से डुपर हिट गाने और इस मौसम का मजा लेना और सुनते रहना।

0: आपको क्या लगता है अपना प्रशासन प्यार का दुश्मन है?
1: बिल्कुल भी नहीं, किसी किसी लोगों को ऐसा लगता होगा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान। और मैं इसलिए ऐसा कहा कि प्रशासन क्या प्यार का दुश्मन है ऐसा आपको लगता है? क्या है ना, कुछ दिनों से यानी कि कल से अपने शहर में प्रशासन ने एक मुहिम शुरू की है महानगर पालिका ने कि जो अनधिकृत कैफे है, जो इलीगल कैफे, जहाँ पर प्यार के नाम पर कुछ और ही चीजें चलती थी, तो उनको तोड़फोड़ करने का, उनको बंद करने का काम प्रशासन ने शुरू किया है। आपले छत्रपति संभाजीनगर मध्ये असे काही कॅफे आहेत जिथे कॅफे कमी आणि लोअर पॉइंट जास्त झालेले आहेत। वहां पर छोटे छोटे कॅबिन बनाए है कपल्स को बैठने के लिए, और वहां पर क्या कुछ होता है आप अलग से बोलने की बात नहीं है। और ऐसे जो कॅफे है ना, तो इसके ऊपर महानगर पालिका हथौड़ा चला रही है एंड उस कॅफे को बंद कर रही है, और वहां पर जो अश्लील चीजें चलती थी उस पर भी पूरा बंदी आ गई है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि यार अपना प्रशासन प्यार का दुश्मन है। नहीं भाई, प्रशासन पूरी दुनिया प्यार से तो चलती है, लेकिन प्यार के नाम पे जो गलत चीजें अपने शहर में हो रही थी, पब्लिक प्लेस को लवर पॉइंट बना दिया था कुछ कपल्स ने, और कैफे की एक पूरी डेफिनेशन ही चेंज कर दी थी। ऐसा लगता है कि यार कैफे में जाने का मतलब है कुछ गलत चीज करना, और ऐसे हो भी रहा था क्योंकि शहर में कुछ कुछ कैफे ऐसे है जो कैफे कम और ऐसी वैसी चीजें बहुत ज्यादा लग रही थी, तो ऐसे कैफे ऊपर एकदम हथौड़ा चल रहा है। एंड दोस्तों, अगर आप भी ऐसे कैफे में जाते होगे तो थोड़ा बच के रहिएगा। देखो, प्यार कीजिए, प्यार को कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन प्यार के नाम पे जो आप अश्लील चीजें करते हो ना, वो अवॉइड कीजिएगा पब्लिक प्लेस में भाई, समझेगा? वरना कल को प्रशासन की नजरों में आप भी आ जाओगे, फिर प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। इलीगल कैफे मध्ये जाऊ नका, आणि जे असे कॅफे आहेत ना, ते आता लवकरात लवकरच बंद होणार आहेत, कारण की ही मोहीम सध्या महानगरपालिका सुरूच ठेवणार आहे। सो बी सेफ अँड स्टे ट्यून्ड।

0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: कभी कभी प्यार बड़ी जोर से नहीं आता, बस धीरे से दस्तक देता है। एक चाय की दुकान, एक किताब और दो अनजाने चेहरे। वो रोज उस दुकान पर आती थी, अदरक वाली चाय और वही पुरानी किताब के साथ। और वो लड़का जो बस उसके आने का बहाना ढूंढता था, चाय तो कम पीता था लेकिन उससे बहुत देखता था। एक दिन हिम्मत करके उसने पूछा, आप रोज यही किताब क्यों पढ़ती हो? वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हर बार इसे पढ़ते हुए कोई ना कोई नया चेहरा नजर आ ही जाता है। और फिर वो दोनों हंस पड़े। कभी किताबों की बातें शुरू हुई और फिर जिंदगी की। कहानी छोटी थी लेकिन एहसास गहरा था। कभी चिल्लाता नहीं, बस चुपचाप महसूस होता है।
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिस पर आज भी बात करने के लिए लोग थोड़ा कतराते हैं और हर कोई ना तो इससे गुजरता है। स्पेशली आज का यूथ बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करता है एंड 20 to 30 ये जो एज है ना, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस अपने जिंदगी में आते हैं। किसी का हार्ट ब्रेक होता है, कोई करियर का टेंशन लेता है और अलग अलग चीजों की वजह से ना तो मेंटल हेल्थ का वो शिकार होते हैं। तो आज यूथ और उनकी मेंटल हेल्थ क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर, मानसोपचार एंड व्यसन मुक्ति तज्ञ। हेलो सर, आपका स्वागत है।
1: हेलो,
0: कैसे हो सर आप?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
0: एकदम बढ़िया सर। तो सर, यूथ के सिलसिले में आज हम बात करेंगे।
1: यस,
0: तो मेंटल हेल्थ आज के वक्त में मतलब छोटे छोटे चीजों से बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब होती है, मतलब यूथ की। चाहे फिर सबसे मेन रीजन है आज के वक्त में हार्ट ब्रेक हो, फिर एग्जाम प्रेशर हो। तो 20 से 30 के यंग एज में कौन कौन से चैलेंजेस को आज की जनरेशन फेस करती है जिससे उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है?
1: अभी क्या है, देखो अपन अभी उसको 20 से 30 साल के बजाय अपन ऐसा कंसिडर करेंगे 15-16 साल से वही। पहले क्या, जो प्रॉब्लम 20-30 में स्टार्ट होते थे वो अभी 15 से 16 साल के बीच में स्टार्ट होते हैं। उसका बेसिक रीजन है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, यानी ट्रांजिशनल फेज, यानी वो उसी वक्त है ना जो बच्चे होते हैं वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप से एडल्ट ग्रुप में जाते हैं। तो उन लोगों में फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसमें अपन हार्मोनल इम्बेलेंसेस होते हैं उनमें। तो इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके बिहेवियर में, थिंकिंग पैटर्न में, या फिर उनका डेली स्लीप पैटर्न हो, या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, इन सब पे असर करता है। एंड यही सबसे नाजुक दौर है कि जिनमें सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, वही एक फेज है जिस फेज में कि आपका करियर भी उसी वक्त डिसाइड होता है, आपका जो एग्जाम का प्रेशर होता है, यानी जितने भी करियर रिलेटेड जितनी एग्जाम्स होते हैं, नीट हो, JEE हो, या और भी कई सारे एंट्रेंस है, या इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह है, वो उसी फेज में आती है। तो वो क्या होता है, उस वक्त करियर बनाने का एक प्रेशर रहता है और आगे की इनसिक्योरिटी रहती है कि मैं वो डिसीजन वो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आगे चल के क्या होगा, ये सब चीज उसमें, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है। अच्छा, यही फेज है कि इसी फेज में लोग एक्सप्लोर करते हैं अपनी आइडेंटिटी, एक्सप्लोर करते हैं लोग बच्चे, और उसमें इसी फेज में अपना सेक्सुअलिटी अपना एक्सप्लोर करते, उस वजह से दिस इज द टाइम जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और उनमें चीजें रहती है, बेचैनी वगैरह बहुत ज्यादा। सो ये वाला पहला हुआ करियर रिलेटेड चीज है। दूसरा मैं बता रहा हूँ, वही एक फेज होता है जिसमें रिलेशनशिप ब्रेकअप, जैसे अभी आपने कहा कि, और रिलेशनशिप में डिमांड बहुत होती है, प्रायोरिटीज वो सेट हो जाती है, ये सब चीजें उसमें और एडिशनल स्ट्रेस करती है। तीसरा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेने स्टार्ट करते इसी एज में, कि पहले खेल कूद वाला, फ्रेंड्स वाला वो ग्रुप होता है, ये फेज होता है जिसमें करियर, जॉब और वो सब चीजें स्टार्ट होती है, मैरिज रिलेटेड सभी चीजें इसी एज में आती है, वो एक उनमें अनसर्टेनिटी होती है उससे रिलेटेड भी, कि अपना लाइफ पार्टनर कैसे होगा, क्या होगा, यार दे आर इन लाइक सर्च ऑफ या अपने अच्छे लाइफ पार्टनर में, वो आजकल जितने अनसर्टेनिटी उनमें बहुत चीजें हो जाती। सो एक और ये एक चीज है। तीसरा इसका अभी क्या है कि एक सोशल मीडिया का ओवर यूज या उसका बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड होना। अभी क्या है, सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट करते हैं, दे पोस्ट लाइक ब्यूटी, दे पोस्ट लाइक रिचनेस, दे पोस्ट लाइक की शॉपिंग या उन्होंने क्या चीजें की है, फिर उस चीज के लिए वो पाने के लिए वो कंपैरिजन उन बच्चों में बहुत बढ़ जाता है या इस एज में। एंड सोशल मीडिया का ओवर यूज होने की वजह से भी दिमाग में या ब्रेन में कुछ चेंजेस आती है, वो अलग से एडिशनल डिप्रेशन एंड एंजाइटी चीजें बढ़ाती है। यही एक चीज है जिसमें अभी क्या है कि एडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि क्या होता है, ये एक फेज है जो बच्चे थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं तो इंडिपेंडेंट थोड़े हो जाते हैं, इन दौरान वो जो उनके ऊपर फैमिली थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि उनका या एक कंट्रोल रहता है, वो थोड़ा छूट जाने की वजह से इसमें एडिक्शन चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने का चांस रहता है। यही एक फेज है कि जिसमें बच्चे एडिक्शन की तरफ या यंग एडल्ट स्पेशली जो अल्कोहल या फिर है ना टोबैको स्मोकिंग या इससे भी और तरीके के थोड़ा और जैसे कैनाबिस वीड सुबह या और भी ड्रग्स वगैरह करते हैं लोग, ये सब चीजें इसी चीज में ये एज ग्रुप रहता है जिसमें सबसे ज्यादा वो स्टार्ट होने का चांस रहता है, जो एडिशनल बर्डन हमें बढ़ाता है। सो फाइनेंशियली सोशली क्राइम रेट भी इसी फेज में बढ़ता है, कंपैरिजन बढ़ता है, सोशल मीडिया यूज, करियर अनसर्टेनिटी और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें मर्ज की जाए तो दिस इज द रीजन कि इस फेज में सबसे ज्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं।
0: सो हम सर के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन कुछ देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और हमारे साथ है डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार एंड व्यसन मुक्ति तज्ञ। सर के साथ आज हम बात कर रहे हैं यूथ के मेंटल हेल्थ के बारे में।
1: और सर, हमारी सोसाइटी में लड़कों से हमेशा स्ट्रांग रहने की बात की जाती है, तो स्ट्रांगनेस की वजह से इतने मेंटल हेल्थ पर कुछ असर होता है क्या कि हमेशा स्ट्रांग ही रहो?
2: एक चीज ये बताऊं मैं, लड़कों से एक्सपेक्टेशन हमें ज्यादा है, बट इन रियलिटी फीमेल के हार्मोन इस तरह से है, वो मेल से या लड़कों से लड़कियां ज्यादा अच्छे से स्ट्रेस हैंडल कर पाती हैं, उनमें वो पॉजिटिव हार्मोन्स है। लड़कियां या फीमेल इमोशनल होती है, लड़के इमोशनल होते नहीं है, पर लड़कियां इमोशनल होके या गर्ल्स होती है वो वेंट आउट कर देती है अपने इमोशन होके। लड़के उनमें ईगो आता है इन चीज के लिए, दे कांट एक्सप्रेस। इस चीज से क्या होता है कि उनमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनसे एक्सपेक्टेशन इस तरह से रहते हैं। हमारी सोसाइटी भी अभी क्या है कि इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कि वही घर चलाएगा, वही आगे चल के करियर उसने पहले बनाना चाहिए। उनके ऊपर हमेशा एक तरह का प्रेशर रहता है कि उन्हें कुछ कर दिखाना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पेरेंट्स को भी उसी से संभालना है, घर भी उसी को चलाना है, सेटल भी उसी को पहले होना है। तो ये चीज डेफिनेटली थोड़ा इन अवर सोसाइटी, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उन चीजों में डेफिनेटली लड़कों के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है। एंड जो मेल नेचर है कि उनमें थोड़ा सा एनर्जी स्ट्रेंथ ये चीजें ज्यादा होती है, तो उनका जो वेंट आउट होता है वो ज्यादा गुस्सा करके ये करके उनका वो ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं रादर देन गेटिंग इमोशनल।
0: सो कुछ इस तरीके से ये सब चीजें होती है जो सर ने अभी हमें एक्सप्लेन की, तो ये बातें याद रखिए। और भी बहुत सारी बातें होगी तो जुड़े रहिए हमारे साथ इन द शो ऑल इज वेल।

0: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।

0: वेलकम बॅक, यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM. RJ अदनान तुमच्या सोबत आहे. आपल्या सोबत आहेत मानसोपचार आणि व्यसनमुक्ती तज्ञ डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर. और सर के साथ आज हम यूथ के मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं.
1: और सर, कैसे पता चले कि नॉर्मल स्ट्रेस और सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यू में क्या फर्क हो सकता है?
2: देखो, अभी क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस देखो, मैं जैसे बताऊँ की स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. वो ऐसा वो स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता है और हर किसी के लाइफ में है. किसी को फैमिली रिलेटेड है, किसी को फाइनेंशियल है, किसी को एकेडमिक है, किसी को करियर रिलेटेड या वर्क प्लेस पे ज्यादा स्ट्रेस. बट स्ट्रेस इज योर पार्ट ऑफ लाइफ. वो रहने वाला है, वो लाइफ का पार्ट है, वो हमेशा रहने वाला है. बस उसका जो कंटेंट है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा. जैसे वो कभी आज मुझे करियर रिलेटेड है, मुझे कल पढ़ाई का होगा, परसों फाइनेंशियल रिलेटेड होगा, तीसरा मुझे मेरे रिलेशनशिप के लेकर होगा. ये चीजें चलते रहेगी. सो क्या है कि ये स्ट्रेस होना थोड़ा जरूरी भी है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस रहा तो वो एक्टिंग फोर्स काम करता है हमारे लिए. अगर स्ट्रेस नहीं रहा है, दूसरे दिन एग्जाम है, अगर मैं आज स्ट्रेस नहीं लू तो मैं पढ़ूंगा नहीं ना, तो इट इज एन एक्टिवेटिंग फोर्स. वो थोड़ा जरूरी होता है. बट स्ट्रेस जब हावी होता है मीन्स आप परसिस्टेंटली वो थॉट आपके दिमाग से नहीं जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे आप उसी थॉट में रहते हो, और जिसके वजह से आपको बेचैनी होना, हमेशा डिप्रेस या सैड फील होना, नींद नहीं आना, ये जब चीजें होती है, या गुस्सा बढ़ जाना या फिर बिल्कुल शांत हो जाना, ये सब चीजें होने लगती है, तब थोड़ा समझना है कि नाउ स्ट्रेस इज ओवरवेलमिंग. नाउ आपका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी कम हो या फिर स्ट्रेस का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है. सो दिस इज द डिस्टिंगुइशिंग फैक्टर कि लाइफ में स्ट्रेस थोड़ा जरूरी है, बट वो हावी होता है और ये सब चीजें आती है, तो समझना कि यस नाउ दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग.
1: हाँ जी, तो कभी कभार स्ट्रेस होना भी जरूरी है
2: एक लिमिट में.
0: यस. सो ये सब बातें याद रखिएगा किस तरीके से होती है. और भी अपनी बहुत सारी बातें होगी, लेकिन कुछ ही देर में, तब तक स्टे ट्यून.

0: आज के यूथ में बहुत से मेंटल हेल्थ वाले प्रॉब्लम नजर आते हैं। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है एंड हमारे साथ साइकेट्रिक डॉक्टर अमोल पाथरीकर सर। स्ट्रेस आता है या वो मेंटल हेल्थ से जूझता है तो उसे लगता है कि मैं एक सुट्टा मार लूंगा या एक ड्रिंक कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा, तो ये कितना हार्मफुल है और अगर इससे बाहर निकलना है?
1: पहले तो देखो, ये रिलेशन जो है ना कि स्ट्रेस और एडिक्शन, पहले तो ये कभी एक साथ जोड़ना नहीं है। अल्कोहल जैसी एक चीज है, जैसे वो आपके दिमाग में जो स्ट्रेस से जो चीजें ब्रेन में आती है उससे कई गुना ज्यादा अल्कोहल या एडिक्शन वो ब्रेन में वो निगेटिव चेंजेस लाता है। इतने हार्मोनल डिफिकल्टीज आती है उन चीजों में एडिक्शन की वजह से, जिसके वजह से आपका डिप्रेशन 10 गुना ज्यादा बढ़ता है। आपका क्या करता है, उतने थोड़ी देर के लिए हमें बस स्ट्रेस बुलाने के लिए वो 2-3 घंटा 4 घंटा आपका स्ट्रेस अल्कोहल कम करेगा, बट आपको दूसरे दिन जब उसका इफेक्ट निकल जाएगा एडिक्शन का, तो आपका स्ट्रेस 10 गुना ज्यादा बढ़ेगा। आप पहले से ज्यादा और स्ट्रेस और आप पहले से ज्यादा डिप्रेस फील करोगे। कि पहले लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेस ना आए इसलिए अल्कोहल पी, पर बाद में है ना ये इक्वेशन थोड़ा रिवर्स हो जाता है। फिर बाद में आप उसके ऊपर इतना डिपेंड हो जाते हो कि आप अल्कोहल का क्वांटिटी बढ़ाने के बाद भी आपको स्ट्रेस उतना हैंडल होता नहीं है, आप वो सैडनेस आता ही है। यानी पहले मुझे मैं थोड़ा ड्रिंक करता था तो मुझे ठीक लगता था, मुझे मेरा क्वांटिटी मैंने बढ़ा दिया तो भी मुझे पहले जैसा ठीक नहीं लग रहा है। अल्कोहल आपके दिमाग में चेंजेस लाएगा, साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकली भी लाएगा। और तीसरा कि यही कि अल्कोहलिक्स में सुसाइड रेट भी बहुत ज्यादा होता है प्रैक्टिकली सी। तो क्या है कि अल्कोहल आपका स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाता, यानी कैपेसिटी कभी नहीं बढ़ाता है, रादर आपको स्ट्रेस के लिए और डिफिकल्ट कर देता है। आपको जिंदगी जीना डिफिकल्ट हो जाती है उससे, आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते।
0: सो मतलब ये एक बहाने है स्ट्रेस कम करने की, तो वो बात गलत है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धोए में उड़ाता चला गया। ये चीजें बस गाने में अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू लॉर्ड। आज हमने यूथ के मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, आई होप कि इससे हमारे यूथ को जरूर कुछ फायदा होगा। स्टे ट्यून्ड।
2: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
5: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus, N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है

0: हर दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FGM 90.8 FM।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
3: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे।
2: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: कभी तो हंसाए।
1: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
2: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
1: ये है एनजीएम 90.8 FM।